की शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति। और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।

तेरी डोली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंसके विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाये तले काल के रट की पिहाये चले एक चिंगारी प्रतिशोध से फिर ही रावण की लंका जले By putting the dust of your feet on his forehead like a tikal god, that devotee of yours lives. He doesn't wish for nectar but drinks the cup of poison happily. Under the shadow of your greatness, does the

किशोर कुमार एंड आशा भोसले फ्रॉम 1986 स्वर्ग से सुंदर राइट ऑन योर नंबर वन हियर्स आशा भोसले. This one I'm taking from a 1981 Kalia, as we say, Sita Ram to Mr. Sukaraj Singh in our company. Sita Ram to you, Bhagwan's choice of blessings, and a happy, happy Thursday night.

ऐसा है तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

क्या रिलेशनशिप, क्या सिचुएशनशिप, समझा नहीं मैं आज तक। अपना तो प्यार को लेके एक ही चुसूल है, चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक।

श्री शैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

लोग कहते हैं तू सबकी सुनती है, तो क्या मैं तेरा नहीं हूं मां? देख तेरे इस बच्चे की आंखों में अब आंसू भी सूखने लगे हैं, बस एक बार मुझे अपनी गोद में छुपा ले।